अब पढ़ती है वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

समझ में ना आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया ऑन सनराइज विद मी शबनम साई. वी आर हैविंग सम टेक्निकल डिफिकल्टीज एज यू कैन प्रोबेबली टेल. वी आर ट्राइंग टू फिक्स इट एज स्विफ्टली एज वी कैन. नॉनदलेस द म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन योर नंबर वन स्टेशन. डोंट गो एनीवेयर. ओके.

0: आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ. सुन रहे हैं ना आप सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ. गुड आफ्टर अ बिट ऑफ अनप्लान्ड एडवेंचर वी आर बैक इन बिजनेस. वी आर होपिंग कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड ऑफ कोर्स. नॉनदलेस द टू सॉन्ग्स बैक टू बैक दिस आवर तेरा हुआ एंड ख्वाब देखूं जहां भी आप सुन रहे हैं. गुड मॉर्निंग.
1: Back-to-back songs with Ambala Sweets, celebrating serving the community for 60 years. Check online at ambala.co.uk for your nearest store or 1 hour click and collect available. Ambala Sweets, now open in Sheffield.
2: Ambala, 100% vegetarian.

0: को डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: Weekdays with Shabnam Sahi.
2: He is truly the star of the people. He's a star of the masses, right?
1: Weekends with Amit Channa.
3: It is a double-edged sword, and I totally understand people being upset.
1: This is Sunrise Radio.
4: दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।